अमित बिनाई लिनुस हरकावा गुह डाउट सुन्दाय तिद्दे मान पोंड नुकाति मान पोंड पोंगिनी बत्ता दाउ डीजे का पेंका हदाउ सुन्दाय तिदिके मरंग गरंग द ममलोहो सेरानो गि करिकत तुमानु सम तुमागा मरंग गरंग का ममलोहो वम सेरा करिकत तुमानु सम तुमागा नगिंदो का